0: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM
2: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शरायत जवाबित लागू हैं.
4: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे. याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे.
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली. वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244.
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चारो
7: दुखोयत दिन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल नुक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबह जो रात जो ताई मरीज
6: घट थियण, कमजोरी ऐं औरतन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधिक मालूमात लाए 2347-3241-200.
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
0: सुनते रहो GFM 90.4.

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111

0: 8875264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मके दिफाई मुआदो कें खिलाफ ना है उन ईरान के बेएतमाद में वरतो वो है। ईरान के अज भी इस्लामाबाद मुआदो कबूल है। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है इस्लामाबाद मुआदे से अमल थिए। सिविल एस्करी क्यादत गरजी अमुन जो कोशिशों जारी रखी। ईरानी सदर मसूद पजिक शान ईरान लाए पाकिस्तान के असूली सिफारतकारी अमुन की कोशिश के सारा कई। अमेरिका ईरान इस्लामाबाद मुआदे तरफ वापस अचन। चीनी सदर अमेरिकी सदर से मुलाकात दौरान मुतालबो कयो। चीनी सदर उम्मीद जाहिर कई तो अमेरिका ईरान एक जामे मुआदे ताई भी पहुंचंदा जैमें एटमी मुआदे समेत बेन मामलों जो जिक्र हों। चीन ए अमेरिकी फौज सदाई जहारियत खिलाफ जंग विड़ी है। अचो तो गड़जी बिन्हीं मुल्क के अवाम के उम्मीदन से पूरा लहूं ए जिम्मेवारी जो मुजाहरों क्यों ए गड़जी बेहतर दुनिया की तामीर क्यों। अमेरिका के दौरे से पौतल चीनी सदर जी व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कई। आलमी सूरतहाल समेत मुख्तलिफ मामलों के ख्याल की डे वट कई वही। डोनाल्ड ट्रंप चाहे अमेरिका ए चीन के सहकार का सवाए दुनिया के मसलन जो हल कढ़ण मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज

0: शरीफ जी, गडियल कौमन जी सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वजीर आजम है तो यूएन सेक्रेटरी जनरल 6 अक्टूबर से पाकिस्तान इंदो। पाकिस्तान माजी जी अमुन के कयाम लाए खिदमतू सरअंजाम लियण लाए तैयार है। खिते में अमुन लाए हरमज लंग में व्यापारी आजादी जरूरी है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां 10 वॻे ताईं मरीज बदन में सूर, मलेरिया, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस डंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल रावटी 95244।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿार जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन में।

0: पैसेंजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125257 86।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट चुका है।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींच और उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: आशा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज कॉल MBBS सीनियर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
0: शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
8: 90.4 पेंजे कारोबार तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
5: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786
5: जी हाँ 2131525786
8: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़
9: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी
10: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मोरे पिया, 30 से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
1: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी.
4: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-41-230.
4: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी. मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी वा बेडी घुराए पूरी करे दींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी. राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबह 9-6:30 शाम ताई. नोट असा वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली. राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086313.
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 बजे खां रात 10 बजे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 बजे खां रात 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे. यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे.
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली. वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244.
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.
4: पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और मा

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331-252-5786।
6: जी हा, 2311-2525-786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।
8: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले,
0: میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا، خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वजे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-230
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासी घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704495244
8: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
9: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: लाए खिते में डिगे मुद्दे लाए अमुन इंतहा है माहे न्यूयॉर्क में सीड़पकारन के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है तो पाकिस्तान की मैशियत मुस्तकम थे बाद तरक्की कर रही है मुल्क में वड़े पैमाने ते सुधारा कया पा वन मशियत के डिजिटाइज कर टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस से कम तेजी से जारी है पाकिस्तान वट जरायत मैदनियात तवानाई समेत केतर ही शोबन में सीड़पकारी जहा मौकिया मौजूद हैं बंदरगाहन बहरी जहाजन वारी सनत में भी सीड़पकारी जहा मौकिया मौजूद हैं जन मां फायदो हासिल कर सकते तो केपीके में गवर्नर राज से मुशावरत थी है केपीके के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है तो लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई का भी हिकमत अमली न है पीटीआई वारा पान गिरफ्तारियों डेई रहा है केपीके हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बनाने चाहे थी पीटीआई वारा पान फरार थी रहा है मके दिफाई मुहिदे तहत सऊदी अरब पाकिस्तान ए तुर्क के परदेही वजीर की मुलाकात टिन्ही मुल्क के सऊदी शहर मुआशी हंधन ते हुसैन के हमलन की मजम्मत मके दिफाई मुहिदे कमेटीज ए वर्किंग ग्रुप के क्याम जो जायजो वरतो वो खिते में जटादार अमुन लाए कोशिशों जारी रखने ते इतफाक बलोचिस्तान के जिम्मेवारे इलाके में अफगान जारी दहशतगर्दन के दाखिल थियण की कोशिश नाकाम फोर्सिस की जवाबी कार्रवाई में केतर ही अफगान तालिबान ए दहशतगर्द मारजी वया सिक्योरिटी जरिये मूजिब चिमन सेक्टर ते अफगान तालिबान रजीम की जारियत वारी कोशिश के नाकाम बनाए वो पाक फौज जारियत कदड़ अफगान तालिबान के चेक पोस्टिस के क्वाडकॉप्टर ए मार्क फायर कर तबाह कर छो जैसे नतीजे में केतर ही अफगान तालिबान ए दहशतगर्द मारजी वया वजीर आजम शहबाज शरीफ जी न्यूयॉर्क में गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल ए लुबनानी हमुनसिब से मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ गडियल कौमन में एंथोनी के किरदार के वाखाण कई फलस्तीन तकरार के हल से जोर भर लुबनानी वजीर आजम से मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ बिन तरफन लागापन के हथी डण इतफाक़ किया

0: मलीर में मुबैना पुलिस मुकाबलो, एक डोहारी मारजी वयो, एक अहलकार जख्मी। पुलिस मूजिब शाह लतीफ टाउन में फास्ट यूनिवर्सिटी वे जो डोहारी से मुकाबलो थो। मारजी वे डोहारी के टी वर के रावल पुट सरवत तौर सुप थी है। मुकाबले दौरान पुलिस अहलकार सलीम पुट हजरत खान जख्मी थो। हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड मुबैना तौर पान के गोली हणी आबगात कर छो। लतीफाबाद नंबर 12 के रहवासी 40 वर्ष के राहिल अब्बासी जिंदगी जो अंत आंदो। वाके का पुलिस पहुंची लाश एरी एम्बुलेंस जरिए अस्पताल मुंतकिल कर। वाके जा सबब मालूम न थी सकया।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
7: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
9: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
10: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
9: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
10: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03132525786।
9: जी हाँ, 2315525786।
10: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना

0: सैंपल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Peher, zindagi ki lehar, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30।

0: की शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नजद अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कारोबार है सीड़पकारी लाइ खिते में डिगे मुद्दे लाए अमून इंतहाई अहम है. न्यूयॉर्क में सीड़पकारन के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान जी मैशियत मुस्तहकम थियण बाद तरक्की करे रही आहे. मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि. मैशियत खे डिजिटाइज करण, टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कम तेज़ी सां जारी आहे. पाकिस्तान वटि ज़राइत, मैदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सीड़पकारीअ जा मौक़ा मौजूद आहिनि. बंदरगाहन ऐं बहरी जहाज़नि वारे सनत में बि सीड़पकारीअ जा मौक़ा मौजूद आहिनि, जिन मां फ़ाइदो हासिल करे सघिजे थो. केपीके में गवर्नर राज ते मुशावरत ते आहे. केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त लांग मार्च बाबति पीटीआई वटि का बि हिकमत अमली न आहे. पीटीआई वारा पाण गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि. केपीके हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स बणाइण चाहे वारा रहिया आहिनि. मके दि पाकिस्तान ऐं प्रेई वज़ीरनि जी मुलाक़ात. टिनी मुल्कनि जे सके दिफ़ाही मुआदे कमेटीज़ ऐं वर्किंग ग्रुप जे क़याम जो जाइज़ो वरितो वियो. खिते में जटादार अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़.

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जे न्यूयॉर्क में गडियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल ऐं लुबनानी हम मुनसिब सां मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गडियल क़ौमनि में एंथोनी गुतरेस जे किरदार जी वाखाण कई ऐं फलस्तीन तकरार जे हल ते ज़ोर भरियो। लुबनानी वज़ीर-ए-आज़म सां मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़ कयो। ईरान अमेरिका सां जंग जारी रखणु नथो चाहे। हाणे जंग ख़तम करण जो फ़ैसिलो अमेरिका खे करणो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तल करण जी ज़रूरत नाहे। अमेरिकी हुकूमत आलमी कानूननि तहत मुआहिदो करण चाहे थी त तेहरान तयार आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची चयो आहे त जेकॾहिं अमेरिका कुझु शर्तनि ते अमल करे त आबनार मुस्क खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो।

0: केटीएन न्यूज राधन जे रिपोर्टर मुज़फ्फर गोरड़ जे घर ते चढ़ाई। हैदराबाद में वकीलन पारां साफी मुज़फ्फर गोरड़ जे घर ते पुलिस चढ़ाई खिलाफ़ एहतजाज कयो। जिम्मेवारनि खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। मेयर में साफी मुज़फ्फर गोरड़ जे घर ते चढ़ाई खिलाफ़ एहतजाज कयो। लाड़काणे में लिंड सुतल नींगरपुर इसरार तौर गोली लगण सबब फौत। हैदरी थाने जी हद मीरण शाह कॉलोनी जे रहायशी पोहित मुश्ताक कलोड़ो जो 7 सालनि जो मासूम पुट राबेल खे घर में निंड दौरान गोली लगण। पुलिस मूजिब गोली किथां आई, कंहिं फायर कई, वाके जी जांच करे रहिया आहियूं। खैरपुर जे सिविल अस्पताल में हाउस जॉब डॉक्टर्स जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। वज़ीफ़ो ॾियण जो मुतालबो। हाउस जॉब डॉक्टर्स मूजिब 3 महीननि खां पघारूं न मिलण सबब परेशान आहियूं। इंतिज़ामिया परेशान करे छॾियो आहे। इख़्तियारियूं नोटिस वठी पघारूं जारी कराए मसला हल कनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638 ऐं 0312024001287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो फाइड ऐं

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

इस्लामाबाद ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ समूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो। केपीके पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज़ ते ट्रैफ़िक मुअतल। अटक पुल खे लोहे कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमिल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि जे कंटेनर

पहुचाया विया मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो। केपीके में गवर्नर राज ते मुशावरत थी आहे। पीटीआई बिल लॉन्ग मार्च ख़त्म करण वारी आहे। केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुनी चयो आहे त लॉन्ग मार्च बाबति पीटीआई वटि का बि हिकमत अमली न आहे। पीटीआई वारा पाण खे गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि। केपीके हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स बणाइण चाहे थी। पीटीआई वारा पाण फरार थी रहिया आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त हिन भेरे फैसलाइतो जहिड़ो थींदो पीटीआई वरी कॾहिं बि इस्लामाबाद जो रुख न कंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी न्यूयॉर्क में गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल ऐं लुबनानी हम मुनसिब सां मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गॾियल क़ौमनि में एंटोनी गुतरेस जी गिरफ़्तार जी वाखाण कई ऐं फलस्तीन तकरार जे हल ते ज़ोर भरियो। लुबनानी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ॿिन तरफ़नि लाॻापन खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़ कयो। ईरान अमेरिका सां जंग जारी रखण नथो चाहे। हाणे जंग ख़त्म करण जो फ़ैसिलो आहे अमेरिका खे करणो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तल करण जी ज़रूरत न आहे। अमेरिकी हुकूमत आलमी कानून तहत मुआदो करण चाहे थी त तेहरान तयारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त जेकॾहिं अमेरिका कुझु शर्तनि ते अमल करे त आबना हर्मुज़ खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। बलूचिस्तान खां ईरान फरार थींदड़ दहशतगर्दनि जी कोशिश नाकाम। फोर्सिस जी कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने जो हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब केस में हिंदुस्तानी फितने जा वाघेर दहशतगर्दनि जी चुरपुर जो पतो लॻाइण बाद कार्रवाई कई वई। चिमन सेक्टर में अफ़गानिस्तान जहरियत ऐं दहशतगर्दनि जे दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम। फोर्सिस जी जवाबी कार्रवाई में केतिरा ई अफ़गान तालिबान ऐं दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब अफ़गान तालिबान रजीम जी जहरियत वारे कोशिश खे नाकाम बणायो वियो। अफ़गान तालिबान जे चेक पोस्ट खे क्वाडकॉप्टर ऐं मार्टर फायर करे तबाह कयो वियो। केटीएन न्यूज़ राधण जे रिपोर्टर मुज़फ़र गुरड़ जे घर ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ कलम धणे नए वकीलनि जो एहतजाज। हैदराबाद में वकीलनि पारां साफ़ी मुज़फ़र गुरड़ जे घर ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। मेयर में साफ़िन मुज़फ़र गुरड़ जे घर ते चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो।

0: जख्मी थी पई सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो वारसन मूजिब लाड़काणे जा रहवासी आहियूं कुझु धुरियुनि सां तकरार हलंदड़ आहे जवाबदारनि हमिलो कयो आहे फायरिंग कंदड़नि खे गिरफ़्तार कयो वञे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: अजरक के रंगों से रंगी
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-94-294
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद जिंदगी।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शरायत जवाबित लागू हैं।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-34-95-244।
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2-36-41-42-200।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10%।

0: हिकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

इस्लामाबाद ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ समूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो। केपी के ऐं पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज ते ट्रैफिक मुअतल। अटक पुल खे लोहे कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमिल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में कंटेनर्स पहुचाया विया। मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो। केपी के में गवर्नर राज ते मुशावरत थी आहे। पीटीआई बि लांग मार्च ख़त्म करण वारी आहे। केपी के जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त लांग मार्च बाबति पीटीआई वटि का बि हिकमत अमली नाहे। पीटीआई वारा पाण गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि। केपी के हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स बणाइण चाहे थी। पीटीआई वारा पाण फरार थी रहिया आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त हुन भेरे फैसलाइती झेड़ो थींदो। पीटीआई वरी कॾहिं मिसिब गडि॒यल क़ौमनि में एंथोनी गुतरेस जी किरदार जी वाखाण कई ऐं फलस्तीन तकरार जे हल ते ज़ोर भरियो। लुबनानी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ॿिनि तरफ़नि लाॻापन खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़ कयो। ईरान अमेरिका सां जंग जारी रखण नथो चाहे। हाणे जंग ख़त्म करण जो फ़ैसिलो अमेरिका खे करणो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तल करण जी ज़रूरत नाहे। अमेरिकी हुकूमत आलमी कानूननि तहत मुआदो करण चाहे थी त तेहरान तयार आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त जेकॾहिं अमेरिका कुझु शर्तनि ते अमल करे त आबना हर्मुस खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। बलूचिस्तान खां ईरान फरार थींदड़ दहशतगर्दनि जी कोशिश नाकाम। फोर्सिस जी कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने जो हिकु दहशतगर्द

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: आतली में अलरादन देबारन औरतन आई मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड आई MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे का रात 10 वगे आई हर आचरते सुबह 10 वगे का रात 10 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो आई बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी अवाजे पहेंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन आई मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड आई MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो आई बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: अमर सिंध जे सींध में एक तारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतन ऐं ॿारनि जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
4: मातली आई आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% आई घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086-3163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सऊदी भली वजारत मौजूद टिनी मुल्कन जहा फौजी अमलदार दिफाही मुआहदे तहत सऊदी अरब की मदद करण वारनि तरीक़े

ते गौर कंदा। मके दिफाई मुआदे तहत सऊदी पाकिस्तान ए तुर्किया के परे वजीरन की मुलाकात टिन्ही मुल्क के सऊदी शहर मुआशी हंधन ते हुसैन के अमलन की मज़म्मत खिते में जटादार अमुन लाए कोशिशों जारी रखने ते इतफाक़।

इस्लामाबाद ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ समूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो। केपी कंहिं पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज़ ते ट्रैफिक मुअतल थी वई। अटक पुल खे लोहे कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमिल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में कंटेनर्स पहुचाया विया, मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो।

केपीके में गवर्नर राज बाबत का भी मुशावरत नाहे थी। पीटीआई डीएम में बिन में लॉन्ग मार्च खत्म करण वारी आहे। केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई वट का भी हिकमत अमली नाहे। पीटीआई वारा पाण गिरफ्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि। केपीके हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बणाइण चाहे थी। पीटीआई वारा पाण फरार थी रहिया आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त हिन भेरे फैसला तो जहिड़ो थींदो पीटीआई वरी कॾहिं बि इस्लामाबाद जो रुख न कंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: Hi, hi, hi.

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक।

0: दो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ 10 वगे खां अॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
2: सुनते रहो GFM 90.4.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

इस्लामाबाद आहे ईंदड़ वेंदड़ समूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो। केपी ऐं पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटर वेज ते ट्रैफिक मुअतल, अटक पुल खे लोही कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में कंटेनर्स पहुचाया विया, मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो।

न्यूयॉर्क में पाक सऊदी ऐं तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीरनि विच में मुलाक़ात बाद थींदी। मुल्कनि जे आला फ़ौजी सरबराहनि जो इजलास सऊदी अरब में तरफ। सऊदी शहरनि ते हमलनि बाद पैदा थियल सूरतहाल ऐं हिकमत अमली ते ग़ौर कयो वेंदो। सऊदी परडे॒ही वज़ारत मूजिब टिन्ही मुल्कनि जा फ़ौजी अमलदार दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण वारनि तरीक़नि ते ग़ौर कंदा। टिन्ही मुल्कनि जे परडे॒ही वज़ीरनि ख़िते में जटादार अमन लाइ कोशिशूं जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ कयो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो जे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

कि हमारे शो का फ्लायर वहाँ पर है, हमारे शो का नाम आ रहा होगा, तो आप हमें वहाँ पे जाके अपने मैसेजेस प्यारे प्यारे से कर सकते हैं, डेडिकेशन भी दे सकते हैं किसी को भी देनी हो तो। खैर जनाब, आपका अपना इश्फाक आपके साथ है, तो मैं शो का स्टार्ट देता हूँ एक बहुत प्यारा सा गाना, इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो प्यारा सा गाना अखड़ी है जनाब, दिलबर जलाल चांडियो और इत्तेहाद बैंड का जनाब, बहुत प्यारा सा गाना है, मैं आपके प्ले कर चुका हूँ, तो आप इस गाने को सुनिए, सुनते रहिए GFM 98 से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद इश्फाक, शाम के 5 बजे साथ हमारा आप साथ साथ हैं।

0: आगे आगे पता नहीं क्या था. एनीवे खैर आपका अपना शफाक आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में. हम लेते हैं शो की पहली कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन शाइन पे कौन आ चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी जनाब इरफान थे वो आई थिंक पहली पहली कॉल पर आ चुके हैं हमारे साथ. क्या लक है आपका इरफान
1: भाई.
0: आप क्या बात है, क्या बात है जबरदस्त. और फिर बाकी जो है लिस्टर को क्या तालियां बजाते रहेंगे.
1: आज यार हमें भी सुनिए ना.
0: आपको सुनते रहते हैं हम आपको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं.
1: बर्दाश्त करें ना यार. आप बर्दाश्त करेंगे लोग भी बर्दाश्त करेंगे.
0: हम आपसे बिल्कुल
1: खफा होंगे तो लोग तो पहले ही खफा है मुझसे.
0: नहीं भाई नहीं, हम आपसे बिल्कुल खफा नहीं होते बल्कि हम आपसे क्या, हम किसी से भी खफा नहीं होते हैं. हम सारे दोस्त हैं, मतलब आप जितने भी लिस्टर्स हैं ना मेरे लिए काबिल एहतराम है. हाँ क्यों यार, क्या हो गया, मैंने कभी आपको कुछ कहा?
1: सोचना पड़ेगा.
0: हाँ देख लें देख लें. और इरफान बताइए हाल चाल कैसे हैं आपके और क्या हो रहा है जिंदगी में.
1: पसीना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और ठीक है.
0: अच्छा पसीना तो मुझे भी आ रहा है क्योंकि इस वक्त 39 सेंटीग्रेड चल रहा है शक्कर का टेम्परेचर.
1: बिल्कुल. अच्छा भाई बहुत सारी बातें आपसे करनी है लेकिन मैं भूल जाता हूँ. पता है आपको
0: तो बहुत अच्छी बात है कि आप भूल जाते.
1: पिछली बार आपने 11 सेक्शन पर पे शो किया
0: जी
1: और मेरी 12 सेक्शन पर पे बजते थी.
0: ओए होए मैं भूल गए होंगे.
1: अपने आपको चोर कह कह के चला गया फिर.
0: आप जमाने के पीछे लग गए और अपनी सारी बातें भूल गए.
1: अपने आप को भूल दिया तो वो भी भूल गया.
0: चलिए कोई बात नहीं, लेट आए कोई मसला नहीं. आपकी 11 सितंबर या 12 सितंबर को बर्थडे थी तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू इरफान अली थेबू. हमारी तरफ से हमारे तमाम लिसनर की तरफ से आप हजारों साल जिए और हमेशा आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली आए
1: इंशाल्लाह. अब लिसनर्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर अगली बार अशफाक भाई खुद याद ना करे तो फिर जुर्माना ऊपर लगेगा.
0: मुझे अपनी नहीं याद रहती, मैं आपकी क्या याद रखूंगा. मेरी मिसेज को हमेशा शिकायत रहती है हमारी बर्थडे भूल जाती है. बिल्कुल
1: अशफाक भाई जी आज थोड़ा सा जो स्पीकरों का वॉइस है ना जो लेवल है
0: हाँ हाँ
1: वो मुझे ठीक नहीं लग रही है कि एक सखर की.
0: अच्छा क्यों, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है. आपकी तरफ वॉइस सही नहीं आ रही है क्या?
1: आपका जो सॉन्ग चला था वो भी थोड़ा सा स्पीकर साफ नहीं थे और पहले ये मैं दूसरी स्टेशनों में देखता था कंप्लेन करता था लेकिन अब हमारी स्टेशन सखर में भी ये हो रहा है.
0: अच्छा चलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आप तक क्लीन एंड क्लियर वॉइस पहुँचे.
1: ये जो लेवल होती है ना आवाज वाली स्पीकरों की ये शायद बढ़ गई है या कोई टेक्निकल.
0: ओके लेट्स सी लेट्स सी. मैं चेक करता हूँ और बताइए
1: हो गए हैं ना शायद इसी का 2012-13 से चल रहे हैं.
0: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज एकदम से ऑसम है. बस थोड़ा सा लेवल का कभी कभी प्रॉब्लम में भी हो जाता है मुझसे तो. अच्छा ये
1: मैंने मजाक की.
0: नहीं नहीं इस ओके यार आप कह सकते हैं बातें कर सकते हैं बातें मुझसे.
1: हमारा स्टेशन है तो हम नहीं कहेंगे तो
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा इरफान ये बताओ कि अगर कभी तुम्हें किसी सिंगर के साथ बैठने का मौका मिले और कोई सॉन्ग उनसे सुनने का मौका मिले बराह रास्त तो तुम किस सिंगर के साथ तुम्हारी ख्वाहिश है कि मुझे मिले और मैं उसे इस गाने की फरमाइश करूं?
1: बाबर भाई मेरा पसंद
0: अशफाक भाई
1: सिंगर अहमद मुगल है. भूल गया
0: लेकिन
1: एक बात थी अशफाक भाई
0: जी जी
1: जो मेरे जेन में थी मैं कहने वाला था कि मैंने कहा पहले मैं सिंगर का नाम लूं फिर आपको बताता हूं इसलिए बाबर भाई आ गया.
0: अच्छा बाबर भाई सिंगर है.
1: बाबर भाई के शो में मैं कॉल करता था ना और उसको कहता था कि आप अहमद मुगल सुनाए तो वो मुझे कहता था ये ऐसे सॉन्ग ना सुने. फिर वो मुझे कहता था इरफान तू ॾाढो रोइणो आई ऐं मां हिकु नंढे हूंदे ड्रामो ॾिसंदो हुयुसि उन में इरफान हिकिड़ो हूंदो उहो बि ॾाढो रोईंदो हुयो.
0: अच्छा नानी अहमद मुगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री.
1: अशफाक भाई मैं जब सोचा था तो म्यूजिक से बिल्कुल भी प्यार नहीं था. मैं नाते और नरे थोड़े से सुनता था लेकिन और म्यूजिक नहीं सुनता था. जब मैंने अहमद मुगल सुना ना
0: जी जी
1: तो फिर मुझे बहुत म्यूजिक से प्यार हो गया.
0: आए, आए, आए,
1: और अशफाक भाई अहमद मुगल आप सुने ना जिस भी.
0: अरे मेरे फेवरेट सिंगर है वो यार.
1: बिल्कुल और हाँ. जिस सिंगर ने सॉन्ग सिंगिंग में आया है जो भी जिसने भी गाया है
0: हाँ.
1: उसने पहला सॉन्ग अच्छा नहीं गाया.
0: अच्छा लेकिन अहमद मुगल के बहुत सारे ट्रैक हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. हिंद रात
1: अंधेरे में पसंद का सॉन्ग
0: शहर है बेकदरन जो.
1: बिल्कुल आप मेरी पसंद का सॉन्ग चलाएं. अहमद मुगल का पहला सॉन्ग है जो पहला था
0: अनमोला जानिया के. ये बहुत प्यारा गाना है.
1: ये भी नहीं छदे वे जिए तो फिटी वियो आराम या मुझे चप्पन पे दुआ सुबुशा.
0: अच्छा तो आपको अब गाना कौन सा सुनना है वो बताएं.
1: अहमद मुगल का जिंदगी का पहला सॉन्ग ये है
0: छदे वे
1: जी तू फिटी वियो आराम.
0: ओके मैं प्ले करने की पूरा कोशिश करता हूँ.
1: अब आप सुने इसकी इशाक भाई टून इसकी जो म्यूजिक होती है ना कितनी साफ है जैसे कोई पुराना सिंगर है सदियों से गा रहा है.
0: हाँ
1: उसमें
0: exactly.
1: जो भी सॉन्ग गाता गाता है
0: उनकी आवाज़ कर देती है उनकी आवाज़
1: भाई ये कुछ

0: सॉन्ग ऐसे होते हैं।
1: अच्छा, उनका गाना थोड़ा सा मुझे बताएं ना, कौन सा वाला है जो आप सुनना चाह रहे हैं? छड़े वे जिनके तू या जानिब
0: जिए तू,
1: छड़े वे जिए तू,
0: फिटी विवाराम।
1: अच्छा जी,
0: लिखे आप इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा।
1: चलें ठीक है, इंशाल्लाह।
0: छड़े वे जिए तू फिटी विवाराम, या मुझे चप्पन पे दुआ से पूछा।
1: चले चले चले, सही सही। किसके नाम करना चाहते हैं?
0: सबसे पहले बहुत दुखी सुनूंगा, आपके नाम करूंगा।
1: ओके, कोई मसला नहीं। हाँ, हाँ, सही।
0: और उसके बाद कुछ दोस्त हैं, सिस्टर मिसेस अली और सिस्टर दुआ खान, फौजिया फरजाना, राय कुमर, ममता कुमर, हुसैन बख्शी, हाफिज गुलाम अहमद सांबल, नजीर मंगिरो, बच्चन चंबानी, लुकमान चाचर, अब्दुल्ला पंगवार और जो भी सुन रहे हैं
1: जी, जी।
0: सबको इरफान अली चेबो की तरफ से बहुत सारे सलाम, और हुसैन बख्शियाल को भी बहुत सारे सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम इरफान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना जानी।
0: थैंक यू,
1: ओके, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ इरफान अली थेबो जनाब, और अब सेकंड कॉल लेने का टाइम आया चाहता है। हम लेंगे अपने शो की एक और कॉल, और एक और कॉल लेंगे। हम आपका नंबर आपके गोश गुजार करते चले, 03000113488 हमारा नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जनाब, अब चार मिनट बाकी हैं, तो मैं क्यों ना ले लूं एक गाना का ब्रेक जो इरफान अली थेबो ने किया है, गाने की फरमाइश, ताकि गाना भी चल जाए, ब्रेक भी चल जाए, और आपकी नेक्स्ट टाइम वापस आके आपकी कॉल्स भी ले ली जाए। तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। अब जो मैंने गाना चलाया, पता नहीं वो वही है कि नहीं है, लेकिन चला लिया मैंने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि

0: पुठनि कुल्हनि ऐं क़िस्म जे हर क़िस्म जे सूर
1: माए दर जो हंधु 9 वॻे खां शाम जी
0: हमज़ा दवा 34 84 01 287 ख़ात्मा दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: वबरकातुहू। हाफिज यूनुस बाबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज किया, थैंक यू सो मच, अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो को सुन रहे हैं। अब्दुल रजाक कुम्हार, मोहम्मद खान कुम्हार, मोहम्मद अली कुम्हार, हरी पोर्ट राइस आपका प्रोग्राम बुधों प्याज पाक भा, थैंक यू सो मच अब्दुल खालिक अब्दुल रजाक कुम्हार भाई, तमाम थैंक प्रोग्राम का बुधो था, आई एंजॉय था क्यों बटों का शो जी। नेक्स्ट कॉल आई चाहूँ था, असलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम असलाम, कौन हमारे साथ? मेरी छोटी सी सिस्टर कहाँ गुम हो गई थी आप इतने अरसे से?
1: गुम नहीं थी, बस कॉल नहीं लग रही थी।
0: अच्छा, कॉल नहीं लग रही थी, और सुनाओ कैसे हाल चाल है, ठीक ठाक है, मजे में है, जबरदस्त है? ये तो मौसम चेंज होता है तो ये सब चीजें सर पे वारिद हो जाती है, कोई बात नहीं, घर में हर बंदे को ये चीज हो जाती है। तो डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर के पास गई आप ये तमाम मसले लेकर?
1: नहीं
0: थे। क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों? बहुत से लोग नहीं जाते डॉक्टर्स के पास, हालांकि मैं चाहता हूं कि सब लोग जाएं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में पता है क्या होता है, लोग अपनी हेल्थ की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं, हम लोग नहीं करते, हम लोग घर पे बैठे कोई ना कोई टेबलेट खा ली, कोई ना कोई सिरप पी लिया, किसी को फोन किया, उसने कहा कि यार मेरे सर में दर्द है, अच्छा तो फलानी टेबलेट ले लो, फलाना सिरप ले लो, तो वो हम लोग वो पी लेते हैं। हेलो, ओ माय गॉड, छोटी की कॉल ही ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पे, मुझे ये छोटी बच्ची गालियां दे रही होगी और डांट रही होगी कि यार अशफाक मेरी कॉल तो उठा ली लेकिन मुझे बात नहीं करने दी। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, खेर असा सबनी सा गड प्यारा
2: वोट रेस मामला।
0: आपका नाम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मोहम्मद नवाज शम्बानी, रईस, रईस मोहम्मद नवाज शम्बानी है ना?
2: गांव से सिकंदर अली शम्बानी बोल रहा हूँ।
0: गांव से सिकंदर अली शम्बानी बोल रहे हैं, क्या बात है जी आप, क्या बात है, ठीक ठाक आयो, मजे में आयो, छा कम कार कदा आयो दाब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तव्हांखे असांजो प्रोग्राम कीअं लॻंदो आहे दाब? वाह वाह वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हिन वक़्तु छा पिया कयो, सिर्फ़ रेडियो ॿुधो पिया या कंहिंसां गॾु गप शप बि कयो पिया, चांहि शाय पियो था, कोन था पियो? हिकु कप मुंहिंजो बि जबरदस्त जबरदस्त, तव्हां कचहरियूं बि कयो ऐं हिकु कप एक्स्ट्रा रखी करे मुंहिंजे हिसे जो तव्हां उहो बि पीजो। ठीक है ठीक है ठीक है, सिकंदर भाई ॿुधायो गानो कहिड़ो ॿुधण अथव अॼु मुंहिंजे शो में? बिल्कुल बिल्कुल ॿुधायो, तव्हां कंहिंजे नाले करणु चाहियो ऐं कहिड़ो गानो ॿुधण चाहियो था शमन जो? अच्छा,
2: गानो इहो आहे त मुंहिंजे
0: सॉरी वरी ॿुधायो, मुंहिंजे मुझे सुहारी सिंध ते। ओके, आया गोलियूं था, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? सिर्फ़ इरफान जे नाले करणु चाहियो था बस? जी जी, थैंक यू सॉरी सिकंदर अली शम्बानी, इरफान भाई को उन्होंने गाना डेडिकेट किया है तो वो जरूर सुनवाएंगे, लेकिन लेते हैं शो की एक, देखते हैं लाइन पर हमारा सम जाती है मेरे समय। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ जी, केर असा सबनी सा गड? हाँ जी बिल्कुल, हाँ सिकंदर शम्बाणी हुए, हाँ असा सा बच्चल जवाहर शम्बाणी है, गुड
2: जी जी जी बिल्कुल।
0: क्या हाल चाल है, ठीक ठाक आयो, मजे में आयो? जबरदस्त जबरदस्त, मजे में। इहो ॿुधायो त शमन जो गानो अदे चयो आहे सिकंदर भा, त कंहिंजे नाले तव्हां करणु चाहियो था? जी जी, कंहिंजे नाले करणु चाहियो? जी जी, जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जवाहर, जवाहर भा, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ है जवाहर भाई, और जवाहर भाई को हम सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गाना, मुझे सुहारी सिंध थे, इस गाने को सुनिए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए।

सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111475

0: bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: वेलकम बैक वंस अगेन। 5:48 हुआ जाते हैं और हम बिल्कुल देर नहीं करते आपकी कॉल्स लेने के लिए। हम लेते हैं शो के आपकी कॉल। अस्सलाम वालेकुम, जीएफएम एटीएट नेटवर्क अशफाक आपके साथ, आई लव यू ऑल शो। हेलो,
1: वालेकुम सलाम सर, अब्दुल्ला बंगवार जनाते सोनम जी सर कंदे कोट
0: सर। वाह वाह वाह वाह, बंगवार साहब के हाल चाल था भाई।
1: नारा जो मेरे बनिया था जो तमाम मौसम ग्रेटर करता हवा हले तो वो बार में तमाम जुड़ाली मौसम है सर।
0: वाह यार, ग्रेट शुक्र अदा, हवा हलिया ट्रे चार दी थी बल्कि साथ टिटियान हवा सफा बंद लगी पई हुई।
1: हाँ सर, गर्मी गर्मी हाँ है,
0: गर्मी वर्मी हाँ अल्लाह करे खत्म थे या तो असानी अच्छा कट पी भैया।
1: हाँ सर, तो कोई मुझे सूंग किले न सत्तर में मुझे पंज मू चाल आया तुझी सोंग
0: अरे मुझा जानी सॉन्ग बुधा बस तू बस
1: वो जगह दुनिया का।
0: अरे यार वाकई तमाम यार गाना मुख्य चाहिए लास्ट टाइम चाहिए वाकई वाकई वाकई सॉरी यार मैं प्ले न कर सकम हाँ मुख्य बुधा जगह है दुनिया में गुजारे वेंदी।
1: हाँ यो डेडिकेट कंदासे बच्चे दोस्तन के तव जो प्रोग्राम जबरदस्त है सर।
0: थैंक यू थैंक यू। अच्छा कैंजी आवाज में हलाया सर, मैं सिंधी जी आवाज में हलाया या वरी
1: दीपा
0: सहर जो एग्जैक्टली तमाम घणो सुठो गानो दीपा सहर जी वॉइस में कैंजे नाले था करना चाहियो।
1: हां सर, मुझे प्यारो दोस्त इरफान थेबो आ सवार मां तो बच्चल शंदानिया सिकंदर शंदानिया मुझे प्यारो भाव जावेद बंगर
0: जी जी
1: इरशाद बंगर जे कहनो तो सखर में विदान उनने के मुझी तरफ इलाही सारो सलाम कर सदा ही आबाद हुंदा डॉक्टर गुणन दी पावड़ा
0: वाले
1: अली हसन बाबू सखर में वक्त बजे तो सर।
0: जी जी जी, अली हसन बाबू भी असन जो रेगुलर लिसनर आहे आई असन की कॉल आजकल न तो करे अलै छो पर सबनी के सलाम। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला बंगवार साहब, पांजो खास प्यार रखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जनाब। अब्दुल्ला भंगवार साहब कह रहे थे कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और जबरदस्त तरीके से जो है हवा भी चल रही है, तो जनाब सर्दी की आमद आमद तो है ना, तो हम चाहते हैं कि जल्दी सर्दियां आ जाए ताकि गर्मियां भाग जाए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब, केर असा सबनी सा गड
1: सजण चाचर तो गलाया से
0: सजण चाचर छा हाल है सजण भाजो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। सजण भाई केड़े शहर का कॉल किया था मुखे? सजन भाई ताजी आवाज कटजे थी, तमा केड़े शहर का कॉल किया मुखा मुखे केड़ी जगह? हाँ हाँ सजन भाई, हाँ हाँ केड़ी केड़ी बुधायो अच्छा कैंजो गानो आ सॉरी ओके नूर बानो मां सर्च किया तो इंशाल्लाह जी मुख्य मिली अदी या नूर बानो तो मां जरूर तां जो गानो हलाए। हां हां त के जे नाले ते करना चाहियो दा
1: साईं मोहम्मद जाफर जो नबर अब्दुल्ला खान कट गयो।
0: अच्छा आई गानो गानो थोड़ो मुखे गाए बुधायो। ओके गुलाम सरवर सुमरो गानो मुखे थोड़े गाए बुधायो ये अदा गानो मुखे बुधायो बीहर। ओके अदा ता हली वियो सजन भा हली वियो आई सजन भा के थोड़ी जल्दी हुई आई थिंक पर कोई गल नहीं तमाम मुखे कॉल कर सको था 03000113488 ते तमाम सा के मैसेज करे सको था आई पांजी फरमाइशूं असा सा गद पूरी कराए सको था। हाने मौसम जरूर चेंज थी रही आहे आई असा जी यही दुआ है तो जल्दी जल्दी मौसम चेंज थे जी सर्दियों अचन सियारो अचे असा भी इन सियारो जो जो है मजो वठूं आई उस समय वेहूं हाने तो उस बिल्कुल भी असा की छुट्टी नहीं लगंदी बल्कि कहीं के भी छुट्टी नहीं लगंदी छो तो हर मानू चाहिंदो आए तो थोड़ी छांव में वेहे थोड़ी थदकार असा भी तक सुकून देने पूरी पूरी कोशिश कयूं था। आई अब्दुल मैसेज शामिल बुधायो मारवा मीटू देखी हली हली सो मच जो है अब्दुल रजाक कुबार साहब ताजी फरमाइश भी बचल शाम आऊं इनामुद्दीन जमाली उनो पुट भी उन गड मुख्य बुधे तो महमूद जमाली महमूद आई इनाम साहब ताजो तमाम घो थैंक्स असा बुध था आई असान शो के इंजॉय कर तमाम घणो थोड़ा आयो तुम बुधा आयो रेगुलर लिसनर आयो नंढड़े के प्यार तमाम के सलाम खोड़ सारा तमाम मुख्य कॉल कर सको था 03000113488 से जीएफएम एटीएच नेटवर्क के तमाम यो शो बुधो था आई जनाब जिते जिते मुझी आवाज वही रही है उतों के तमाम दोस्तों के यो ही चवण चाहम तुम अगर मुख्य बुधो था तो पो देर साझी है असा तमाम एतरा प्लेटफॉर्म दिना फेसबुक से तमाम मुख्य मैसेज कर जीएफएम एटीएट से वही असान असो प्रोग्राम जो नालो अच्छे तो वही कर मैसेज कर फोन कॉल कर 03000113488 से उनके अलावा तुम मुख्य मैसेज भी कर सको था जनाब 888 1 तो देर छाजी है तुम असके कॉल कर मैसेज कर सोशल साइट से असके मैसेज कर असा तुम शामिल शो कदे जो है कॉल सा मैसेजेस आई तुम्हारी डेडिकेशंस सो गाइज सखर जो मौसम भी यकीनी तौर से हिंसर चेंज थो छो तो हाँ सेप्टेम्बर भी पांजे पुजाने से पहुंचने वो है जो है अक्टूबर जो है पांजा रंग दिखारे तो हाँ केतरा दिखारे तो यह अल्लाह की खबर पर हाँ अस तुम्हें था अब्दुल्ला भगवान साहब की तमाम घनी प्यारी फरमाइश से तमाम घड़ो प्यारो सॉन्ग है जैसे इन दुनिया में गुजारे वेंदे पर उनका वठूँ था उनका पैर एक कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब के सभी
2: सागर
0: भा के हाल चाल ठीक ठाक आयो
2: खैरियत खैरियत करम करम मालिक जाला
0: हाँ सागर भा तमा वो मोटरसाइकिल वाला सागर आयो ना वेरी गुड सागर भाई केड़ा हाल चाल था मोटरसाइकिल जो कम किए तो हले तांजो
2: बस शुक्र है मालिक
0: हाँ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त सागर भाई आज मुख्य कोई शेर बुधायो या कोई गानो बुधायो
2: गानो बुधाया तो
0: हाँ गानो बुधायो
2: रफ्ता रफ्ता हो मेरे हस्ते का सामा हो गए पहले जाओ फिर जाने जाओ फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता हो मेरे हस्ते का सामा हो गए
0: ग्रेट यार जबरदस्त तुम्हारी आवाज में एक मिठास आए एक अपनायत आए एकड़ी कशिश आए तमाम घणो जबरदस्त तुम्हारी सुठी बात
2: मित्रो बोलो मित्रो
0: हाँ हाँ
2: आप तो नजदीक से नजदीक तर आते आप तो नजदीक तर आते पहले दिन बिल्कुल बदल बिल्कुल बदलना
0: हो गए रफ्ता रफ्ता हस्ते का सामा हो गए वाओ यार ग्रेट क्लैपिंग फॉर सागर भाई जबरदस्त यार तुम्हारी आवाज में तमाम घनी प्यारी है मिठास है थैंक यू सो मच सागर भाई हाँ जो है हलाया तो गानो जदे इन दुनिया में गुजारे वेंदे अब्दुल्ला भंगवार साहब जी इलाही फरमाइश थे छो तो लास्ट टाइम इन फरमाइश पूरी कोन कई से हाँ तुम यो गानो कें नाले था करना चाहो ठीक ठीक ठीक थैंक यू सागर भाई पाँच खास ख्याल रखो असा गड़ी रहा करो थैंक यू हमारे साथ जनाब अब्दुल्ला

और सॉरी अब्दुल्ला भंगवार की फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ है सागर भाई, बहुत ही सुरीले से सागर भाई। अब हम प्ले करते हैं आपके लिए बहुत प्यारा सा गाना, जरिए ने दुनिया में गुजारे बिंदा से। सुनिए सुनते रहिए GFM88 नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद दर्श पाकनियाजी। इसके बाद है ब्रेक, ब्रेक के बाद एक न्यूज ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे आपके साथ आपके अपने शो में। हमारे साथ रहिएगा।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niha Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वफाकी हुकूमत पीटीआई के लॉन्ग मार्च करण जो चैलेंज ॾेई छॾियो. सुद समाव वारे वफाकी वज़ीर अताउल्ला तरण चयो आहे त पीटीआई वारा बुज़िल आहिनि, जंहिं सबबि ई हुननि लॉन्ग मार्च मुलतवी कयो आहे. हुननि में हिमत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारियनि. पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकार ऐं टीटीपी जी ॿी टीम आहे. केपी जो वॾो वज़ीर, सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टीटीपी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे. पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़म्मत बि नाहिनि कंदा. दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे. पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद ॾांहुं ऐलानियल लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर ताईं मुलतवी करण जो फ़ैसिलो. पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पिशावर में अहम इजलास. लॉन्ग मार्च जी तयारियुनि ऐं हिकमत अमली जो जाइज़ो वरितो वियो. ज़रियनि जो चवण आहे त महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं अलामा नासिर अब्बास खे इतमाद में वठण बाद ऐलान कयो वेंदो. के पी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी चयो आहे त लॉन्ग मार्च लाइ तयारियूं मुकमल आहिनि, पोइ हिते न हटंदासीं.

इस्लामाबाद ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तनि खे कंटेनर रखे बंदि कयो वियो। केपी ऐं पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटर वेज ते ट्रैफिक मुअतल, अटक पुल खे लोही कोका ऐं कंटेनर्स रखी मुकमल तौर बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में कंटेनर्स पहुचाया विया, मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो। पीटीआई ॾींहं ॿिन में लॉन्ग मार्च ख़तम करण वारी आहे। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त लॉन्ग मार्च बाबति पीटीआई वटि का बि हिकमत अमली न आहे। पीटीआई वारा पाण गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि। केपी हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स बणाइण चाहे थी।

0: ठीक है।
1: जख्मी खादिम भाई कैसे मिजाज हैं आपके, आपके कुछ जख्म ठीक हुए या अब तक हरे हैं? A1 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, मैं आज से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने नाम के साथ जख्मी आखिर क्यों लगाया है? नहीं प्लीज बता दें ताकि मेरी क्यूरियोसिटी खत्म हो कि यार एक बंदे ने अपने नाम के साथ जख्मी लगाया, इतना हट्टा कट्टा माशाल्लाह और अच्छा बंदा, जख्मी कहाँ से हो सकता है? दिल जख्मी है आपका? मरिया से कह डम्ब नहीं आता। मनाइयो न तो बता सको तक कहें डम्ब नहीं आता दिल में। हलो ठीक है, कोई मसलो ना है, धूल पायो पर यो बुधायो जो हाँ मैं गानों बुधाया तो मुख्तियार शीरी जो तमाम घणो जबरदस्त गानों है, इन जहा लिरिक्स मुख्य पसंद आए जो वकार भाई हाँ असा बुधाया भी सही तो कैंजे नाल था करना चाहो वाह वाह वाह कराची का मजा वो था माना जबरदस्त जबरदस्त कराची जो मौसम किया है
0: कराची जो मौसम
1: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त उतरे।

अब हम चलते हैं एक अदद बिल्कुल सॉन्ग की जानेब, और वकार भाई की फरमाइश पर हम आपको सॉन्ग जरूर सुनवाएंगे क्योंकि वकार भाई ने बड़े प्यार से फरमाइश की है, तो हम उनकी जो है फरमाइश बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। मुख्तार सिद्दीकी का गाना चला चुके हैं जो कि उन्होंने कहा था सिक्की लदा यार, डेडिकेटेड टू रुखसार एंड डेडिकेटेड टू फ्रॉम माई साइड वकार भाई।

0: सिकिला दयार मुखे कराए दीदार। क्या बात है जनाब, बतार भाई की फरमाइश पर आपकी समातों की नजर की हमने बहुत प्यारा सा गाना। और आप लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मस्ताक बा गिलूरी कहां खालिक लाशरी आज बाद आला तो
0: खालिक बा केड़ा हाल चाल है ता जा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बा तू पांजो बताए
0: सफा मजे में आई झलूरी ता जो गोठ के लगो पियो आप
1: सही झलूरी माशाल्लाह ने जड़ा सब के यार मोहब्बत बड़े तमाम खुश लगो है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त गाल है। जिते मोहब्बत हुंदो आ प्यार हुंदो आ अमन शांति हुंदी आ त उआ जेको आ सूं हुंदी आ उन इलाके जी त तमा जो झलूरी यकीनी तौर ते सिंध जी सूं आ है। तमा जरा सोणा मानू ते रहन था त यकीनी तौर ते उते अमन प्यार ऐ मोहब्बत ऐ शांति जो पैगाम तो जरूर हुंदो। खालिक भाई हाय थैंक यू सो मच यार। खालिक भा तुम यो बधायो त तांजी जिंदगानी की हले थी आई तमा चाय शाय पीती आ कोन पीती आ घुमण फिरण व्याओ कोन व्याओ जुमे जो डी आ है यकीनी तौर ते ओताकन में भी रश हुंदी आई दोस्तन सा उठण में भी हुंदो
1: बिल्कुल जरूर में निमाज पढ़ी थी तो होटल में चाय पीती थी वही घर दोस्तों का गड आया थी बाहर मन भाई क्या सब उठे भी चाय गड पीतो थी।
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त मौसम
1: जो जो में भी तमाम गुजरो।
0: अच्छा गुड आता है जी जरूरी में मौसम थोड़ा चेंज थे तो या कौन थो थे
1: कबली वाला माशाल्लाह हियर वी आई पी लगे
0: माशाल्लाह। केड़ो गानो बुझन चाहो था दादा फौजिया सुमरो जो आहे जेको ओडारिया मतो लाए पखी कें जे नारा थकन चाहो अच्छा ठीक है थैंक यू खालिक भा पांजो खास ख्याल रखो असंके दुआओं में याद रखो थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब हमारे साथ थे खालिक भाई और झलूरी से। तो खालिक भाई हमारे रेगुलर जो है लिस्टनर भी हैं कॉलर भी हैं हमेशा कॉल करते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जनाब आप बिल्कुल
2: मेरे
0: हेलो शुक्रिया आपने आवाज निकाली। अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम अदा के रहा है सबनी साइगर

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-294।
8: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
10: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: बि आयो, तव्हां शायर बि आयो, सिंगर बि आई थिंक आयो, छो त असांजे शो में ईंदा आहियो कॾहिं कॾहिं, त असां जी दिलि चए पई त कोई अहिड़ा सिंगर अचनि जेका असांखे गानो ॿुधाइनि, त अॼु तव्हां मूंखे गानो ॿुधायो जीअं सागर भाई मूंखे ॿुधायो आहे ऐं वकार भाई बि गायो ॿुधायो
1: आहे।
0: तव्हां त मूंखे पंहिंजी आवाज़ ॿुधायो, पोइ जेका तव्हां ॻाईंदो उहो
1: मां
0: ॿुधाईंदुमि।
1: जी
0: एग्ज़ैक्टली तव्हां ॿुधायो
1: प्रोग्राम जे बारे में कुझु ॻाल्हायूं
0: न? हा बिल्कुलु ॻाल्हायो, बिल्कुलु ॻाल्हायो।
1: प्रोग्राम तव्हां सुठो थी रहियो, पर थोरी मां रिक्वेस्ट कंदुमि।
0: हा हा बिल्कुलु रिक्वेस्ट कयो।
1: हिन में कुझु सवाल रखो हफ़्ते ते, माना सवाल हुजे सुठो।
0: अच्छा, सवाल जवाब तव्हां रखिया आहिनि, पर घणेई माण्हू तव्हां
1: सिखी वठंदासीं, कुझु ॿुधी वठंदासीं, कुझु मालूमात असांखे हासिल थींदी प्रोग्राम।
0: एग्ज़ैक्टली मां इहो कॾहिं कॾहिं शुरू बि कंदो आहियां, पर कुझु लिसनर्स जेके आहिनि न कॉलर, मूंखे रिस्पॉन्ड न कंदा आहिनि बिल्कुल बि, त हुनखे ख़बर न हूंदी आहे, त पोइ उहो सिलसिलो जेको आहे
1: ख़बर न हूंदी। ईअं आहे न सर,
0: सवाल त हूंदा ई दिमाग़ खे हलाइण लाइ आहिनि न, पर हाणे दिमाग़ बि त हले न। बिल्कुलु होशियारनि जी कॉलिंग लॻंदी आहे न, मां छा कयां, इहो हिकिड़ो अलमियो आहे। पर जेका बि आहिनि मुंहिंजा दोस्त आहिनि, लिसनर आहिनि, सभु होशियार आहिनि, हमेशह खिलंदा रहनि, मुस्कराईंदा रहनि। एग्ज़ेक्टली असांजा भाउर आहिनि, असांजे लाइ क़ाबिल एतराम आहिनि। जी जी, हाणे मूंखे ॿुधायो त गानो
1: गानो ॿुधायो।
0: जी जी, जेको पूजन चाहियो था। अच्छा, इहो गानो हो शेर हो?
1: शेर आहे।
0: अच्छा, गुड यार, गुड।
1: इहा
0: सभिनी खोसनि जा हाल विगड़ियल छोड़नि, छो त हाणे मूंखे ज़ख़्मी खादिम खोसो कयो, उहो बि ज़ख़्मी सां तखलुस लॻाए पियो, उहा बि बेहाल हुयो, ऐं हाणे तव्हां आयो आहे, तव्हां बि बेहाल आहे। अला रहम कंदो, खोसनि ते इलाही रहम करे अला साईं, त उहा ख़ुशहाल थी वञनि, ज़ख़्मी वख़्मी हटाए छॾनि पंहिंजे नालनि सां, ऐं ज़बरदस्त तरीक़े सां इंजॉय कनि ज़िंदगी खे। त उहो गानो ॿुधायो वणे अदा।
1: मजबूर आया सची तो ॿुधायां, मजबूर आया सची तो ॿुधायां, ओ
0: निराल कई
1: थी मूंखे वरी तो सजाइना।

0: मजदूराना।
1: क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू सो मच माशूक। ओके, थैंक यू माशूक भाई, पांजो खास ख्याल रख जो। थैंक यू,
2: जरूर रखना।
1: हाँ ये बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू माशूक भाई, थैंक यू सो मच।
2: ख्याल रखियो, ख्याल रखियो।
1: हाँ ये पांजो ख्याल
2: दोस्तों के जियो छपर छाव थी वो बस पुजे तो तकलीफ न थी सके तो मोहब्बत
1: सभी जो ख्याल रखो, सभी के खुश रखो, पर पान के पान के न विसारजो, पान के न विसारजो। हाँ पर हाँ नए जमाने से गरीब भी आ पान से पांजो भी ख्याल रखो, बेहन जो भी ख्याल रखो।
2: ठीक है, सुबह जो दुश्मन थी सके तो सर।
1: हाँ एग्जैक्टली जी जी, ठीक
2: है।
1: इंशाल्लाह अल्लाह सबनी के खुश रखे जितने भी
2: हैं।
1: आमीन आमीन, सब खुश हो जाए सब। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंशाल्लाह। इतना हमारे साथ माशूक भाई और

0: भाई के बाद हम जरूर दूसरी कॉल भी लेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं, तो लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम आशुक भाई के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे भाई?
1: खैर सर, तां बुधाय तां ठीक आ सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मुजा मीठा भा, के रहे असा सबनी सा गड?
1: सर जतोई बागर जी का।
0: बागर जी का के रदा?
1: मोर जतोई।
0: मोर जतोई, मोर तां नालो तमा गुणो प्यारो आ यार।
1: जी जी सर, जी जी।
0: हां मोर भा, कम कार के तोले बनी बारो के तोले?
1: बस अर शुक्रा वाले रहता हूं।
0: तां के असा जो प्रोग्राम के लगंदो आदा
1: सर? प्रोग्राम जो इंतजार होंदो आ
0: हाय। अच्छा जबरदस्त, तमा कितरी टाइम का कॉल मिलायो आ है यहां मिलिया
1: सर? पंजी गांव काल मिला या हमें सत्तर टीम करना
0: था। अल्लाह केयर करो। अच्छा ये बताओ शमन तो प्ले क्या कहें जनाब तक करना चाहो?
1: शमन मीरा ने जो सर आउटर तो बुदे मुरी बली जतो ही।
0: हां हां
1: आई पारो भाव आए सामने ले जतो ही।
0: जी जी थैंक यू मोर भाई, खास कर रख दो। ओके ओके ओके ओके ओके। हमारे साथ हैं जनाब इस वक्त मैसेज के थ्रू गोट पुराना जंगुआ जैकाबाद का वफा अली गुल कटबार, अवेस गुल अब्बास गुल कटबार, खान मोहम्मद महर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चवंदा जनाब के हाल चाल आहिनि? प्यारा भाउ सोनू खान मसोई के सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तव्हां खे गानो ॿुधायो त शमन जो इंजॉय कयो ऐं असां सां गॾु रहो। थैंक यू सो मच गोट पुराणे जंगुआ जैकाबाद खां वफ़ा अली गुल कटबार साहब। हींअर मां शमन जो गानो प्ले करे चुको आहियां जेको आहे तोखे विसारा। गौर सां ॿुधो, तमामु घणो प्यारो गानो आहे, एंजॉय कयो।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki aawaz.
1: Sona sirf zevar nahi har ghar ki amanat hoti hai. इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अच्छा साईं समीना कवल जो कलाम आहे अखरनि में पाणी पाणी अखरनि में कींजर कींजर में पाणी पाणी में तुंहिंजी तस्वीर
1: प्यारा
0: इहो कलाम
1: अखरनि में पाणी पाणी में छा आहे
0: बाबा अखरनि में कींजर कींजर में पाणी
1: अच्छा अखियुनि में कींजर बि अची वई ओके ओके ओके मां तव्हांखे ॿुधायां थो समीना कवल आई त आहे पर हाणे कींजर लाइ कढी वई मां ॾिसां थो पर कंहिंजे लाइ करणु चाहियो
0: कालक दाशारी काठड़ी का गुलाम रसूल फरी अजीज सलंगी अजीज जरवार गुलाम रही बलोच प्यारी दुंदू दिलीप कुमार जी अली हसन बाबू जेके इरफान भाई जे सभिनी इरफान थेवे जे सलाम मोहबत
1: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू कुर्बान साहब पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो थैंक यू हमारे साथ बहुत प्यार से कॉलर कुर्बान खास कली भाई और कुर्बान खास कली भाई के बाद देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है जनाब लेंगे शो की एक और कॉल लेकिन आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं जनाब हमारा नंबर है 03000113488 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में शामिल प्रोग्राम हो सकते हैं SMS भी कर सकते हैं लेकिन अब शो को जनाब वाइंड अप करने का टाइम भी आन पहुंचा है और आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जनाब कॉल करने के इंतजार में बैठे हैं कि कॉल करेंगे तो जनाब बिल्कुल अब टाइम बहुत कम है तो हम क्या करते हैं शो को वाइंड अप करते हैं इसी बात के साथ मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों के दो घंटे का जो ये खूबसूरत सफर अब जो है इख्तिताम की तरफ जा रहा है लेकिन याद रखिए दोस्तों रेडियो प्रोग्राम खत्म हो सकता है मौसीकी रुक सकती है आवाज खामोश हो सकती है लेकिन अच्छी सोच का सफर जारी रहना चाहिए अपने आप को वक्त दें अपने वालदेन की कदर करें दोस्तों का ख्याल रखें अपनी तालीम और करियर को संजीदगी से लें क्योंकि जनाब करियर और तालीम को जब हम संजीदगी से लेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हाँ जिंदगी में जहां भी जाएं अपने साथ अच्छा अखलाक जरूर लेके जाएं मैं आपका अपना अशफाक नियाज़ी और आप सुन रहे थे GFM 88 सिंध की आवाज से शो आई लव यू ऑल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा आज जनाब मुस्कुराते रहिए खुश रहिए और हाँ याद रखिए जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े मौका का इंतजार ना करें ये मत सोचे कि बड़ा मौका आएगा तो मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा इसी इंतजार में सारी जिंदगी गुजर जाती है और बाजू का बड़े बड़े मौके नहीं आते तो जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े मौके का इंतजार न करें कभी कभी छोटा सा मजबूत कदम ही काफी होता है तो जनाब GFM 88 आपके दिलों को जोड़ता है आपके दिलों की आवाज को जोड़ता है तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए मैं आपसे चाहता हूं इजाजत इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं आपसे मिलूंगा और बहुत खूब एंजॉय करेंगे बातें करेंगे और आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे तब तक के लिए अशफाक नियाज़ी को दीजिए इजाजत समीना कवल का गाना लगा चुका हूं इस गाने को एंजॉय कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए दीजिए इजाजत टेक केयर गुड बाय हैव अ नाइस डे लव यू ऑल एंड अल्लाह निगेबान।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हम किसी सूरत भी इस तरह की फायरिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
4: वफाकी हुकूमत पीटीआई के लॉन्ग मार्च करण जो चैलेंज दई छो सुन समा वाले वफाकी वजीर रताउल्ला तारण चयो आहे त पीटीआई वारा पुसिल आहिन जे सबब ही हुनन लॉन्ग मार्च मुल्तवी कयो आहे हुनन में हिम्मत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारन पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकार ऐं टीटीपी जी बी टीम आहे केपी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टीटीपी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़म्मत बि नाहिन कंदा दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे पीटीआई जो 27 सितंबर ते इस्लामाबाद ॾांहुं ऐलानियल लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर ताईं मुल्तवी करण जो फ़ैसिलो पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पिशावर में इजलास लॉन्ग मार्च जी तयारियुनि ऐं हिकमत अमली जो जाइज़ो वरितो वियो ज़रियुनि जो चवण आहे त महमूद ख़ान चकसई ऐं अलावा नासिर अब्बास खे इतमाद में वठण बाद ऐलान कयो वेंदो केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी चयो आहे त लॉन्ग मार्च लाइ तयारियूं मुकमल आहिनि पोइ हिते न हटंदासीं

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकर रत अचण सख्त सूर वेणी तकलीफ जड़न मसलन में मुब्तला है कान टुजो था त हाणी परेशान छण जी जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो निजाते बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाए आज़मूदा कोरस। निजाते बवासीर कोरस मिलण जो हंध हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे का शाम जो 5 वगे ताई। हमजा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाए फोन करियो 0302 36 36 800।

0: 87 ऐं 0612 34 01 287 सुकून एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
2: आओ सब्जी वालो ताजी सब्जी खाओ अदा गोश्त महंगो मुर्गी महंगी मच्छी महंगी ताजू सब्जी खाओ सेहत बनायो आओ।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए।

0: आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जेकर तवा के मैदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टी उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाँ परेशान थियण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे की खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियुन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 0347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अफाकी हुकूमत पीटीआई के लॉन्ग मार्च करण जो चैलेंज डेई छो समा अफाकी वजीर अल्लाह तारा है पीटीआई वा बुजिल जै सबब ही लॉन्ग मार्च मुलतवी किया है उन्होंने हिम्मत आए तो लॉन्ग मार्च कर डेखारियन पीटीआई दहशतगर्दन की सहूलतकार टीटीपी की बी टीम है केपी जो वो वजीर सूबे जो वो वजीर घट ए टीटीपी जो कमांडो लगन है पीटीआई वा दहशतगर्दन की मुसम्मत भी नाइन कंदा दहशतगर्दन की सहूलतकारी पीटीआई की पॉलिसी है पीटीआई जो 27 सितंबर ते इस्लामाबाद ऐलानियल लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर ताई मुलतवी करण जो फैसलो पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पिशावर में अहम इजलास लॉन्ग मार्च की तैयारियों ए हिकमत अमली जो जायजो वरतो वियो जरियन जो चवणा है महमूद खान अचकज़ई अलामा नासिर अब्बास के एतमाद में वठण बाद ऐलान किया वेंदो केपी जे वडे वजीर सुहेल आफरीदी चयो है लॉन्ग मार्च जरूर थींदो पर हतमी फैसलो सियासी कमेटी कंदी इस्लामाबाद ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद किया वो केपीए पंजाब का ईंदड़ वेंदड़ मोटरवे से ट्रैफिक मुअत्तल अटक पुल के लोही कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद किया वो पंजाब जैसे मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स

चाहिया पिया मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो। न्यूयॉर्क में पाक सऊदी ऐं तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीरनि विच में मुलाक़ात बाद टिन्ही मुल्कनि जे आला फ़ौजी सरबराहनि जो इजलास सऊदी अरब में तलब। सऊदी शहरनि ते हमलनि बाद पैदा थियल सूरतहाल ऐं हिकमत अमली ते ग़ौर कयो वेंदो। सऊदी परडे॒ही वज़ारत मूजिब टिन्ही मुल्कनि जा फ़ौजी अमलदार दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण वारनि तरीक़नि ते ग़ौर कंदा। टिन्ही मुल्कनि जे परडे॒ही वज़ीरनि ख़ते में जटादार अमल लाइ कोशिशूं जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ कयो। तुर्क परडे॒ही वज़ीर जो मक्का दिफ़ाई मुआहिदे ते तनक़ीद कंदड़नि खे जवाब। हाकान फिदान अमरीका जे अॻूणे सफ़ीर जेम्स जेफरी खे मुख़ातिब थींदे चयो त गुज़िरियल 50 सालनि दौरान नेटो चार्टर जे इज्तमाही दिफ़ा वारो आर्टिकल 5 घणा भेरा लागू थियो आहे। 50 सालनि जी तारीख़ में आर्टिकल 5 रुगो हिकु भेरो लागू थियो, पर केर बि हुन खे काख़िरी शी न चई रहियो आहे। नई क़ाइम थियल दिफ़ाई इतिहाद खां यमन जी 10 सालनि वारी तकरार जो फौरी हल करण जो मुतालबो मुनासिब वारो न आहे।

ऐं पाकिस्तान विच ओभर में अमन वारियुनि कोशिशनि खे आसान बणाइण लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। कारोबार ऐं सीड़पकारी लाइ ख़ते में डिघे मुदे लाइ अमन इंतिहाई अहम आहे। न्यूयॉर्क में सीड़पकारनि खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान जी मईशत मुस्तहकम थियण बाद तरक़ी करे रही आहे। मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि। मईशत खे डिजिटाइज़ करण, टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कम तेज़ी सां जारी आहे। पाकिस्तान वटि ज़रात, मुआदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा मौजूद आहिनि। बंदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारी सनत में बि सीड़पकारी जा मौक़ा मौजूद आहिनि, जिन मां फ़ाइदो हासिल करे सघिजे थो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडू सुठो
1: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-294।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
4: जी हा, 2311-2525-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को भी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अमा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

वफाकी हुकूमत पीटीआई खे लांग मार्च करण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। सतसमा वारे वफाकी वज़ीर अताउल्ला तरण चयो आहे त पीटीआई वारा पुसियल आहिनि, जंहिं सबबि हुननि लांग मार्च मुलतवी कयो आहे। हुननि में हिमत आहे त लांग मार्च करे ॾेखारनि। पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकार ऐं टीटीपी जी पी टीम आहे। जेपी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टीटीपी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़म्मत बि नाहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे। पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद ऐलानियल लांग मार्च 5 अक्टूबर ताईं मुलतवी करण जो फ़ैसिलो। पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पेशावर में अहम इजलास। लांग मार्च जी तयारियुनि ऐं हिकमत अमली जो जाइज़ो वरितो वियो। ज़रियुनि जो चवण आहे त महमूद ख़ान चकसई ऐं अलामा नासिर अब्बास खे इतमाद में वठण बाद ऐलान कयो वेंदो। केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी चयो आहे त लांग मार्च ज़रूर थींदो, पर हतमी फ़ैसिलो सियासी कमेटी कंदी। बैरिस्टर गोहर चयो आहे त इस्लामाबाद ज़रूर ईंदासीं।

0: इस्लामाबाद में ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद किया हुआ। केपीए पंजाब का ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअत्तल। अटक पुल के लोही कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद किया हुआ। पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाए गया, मुख्तलिफ रोड के बंद किया वो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई के खत लिखी गालियन की दावत दई छी। जरियन जो चवण है वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के गालियन इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रियन बाबत खत लिखो है। अपोजिशन लीडर के तर्जमान वज़ीर आज़म के खत मिलने की तस्दीक कर छी। हुकूमत से गालियन तां फिरण जो भी इल्जाम लगाया। न्यूयॉर्क में पाक सऊदी ए तुर्किया के परडेही वजीर विच में मुलाकात बाद चिन्ही मुल्क के आला फौजी सरपराहन जो इजलास सऊदी अरब में तलब। सऊदी शहर से हमलन बाद पैदा थियल सूरतहाल हिकमत अमली गौर किया वो। सऊदी परडेही वजारत मूजिब चिन्ही मुल्क जहा फौजी अमलदार दिफाई माहे तहत सऊदी अरब की मदद करने वार तरीकों से गौर कंदा। चिन्ही मुल्क परडेही वजीर खत में जटादार अमल लाय कोशिशों जारी रखने से भी इतफाक किया।
1: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was NATO? Nobody's criticized.
2: Aap sun rahe the GAFM Network par KTN News.

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जी पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते

0: 10 साल गारंटी सा छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐ सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
0: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
0: जी हां 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्का विखरियल दिलिन में आ बेआई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ।

GAFM नेटवर्क ऐं दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानतनि महबूबनि दिलरुबा दोस्तनि पिणी प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदी।

नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आई आ। नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आई आ, करे तू ओड़कू आए वरी मु दिल लगाई आ। नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आई आ, करे तू ओड़कू आए वरी मु दिल लगाई आ। अचन था दूर ता घुंघरू वजे थी विज वांगुर तू, अचन था दूर ता घुंघरू वजे थी विज वांगुर तू, कई कोयल इए कूकू वरी का याद लाई आ। सरह जी छांव में तोसा मुलाकातियूं कयूं जे मां, सरह जी छांव में तोसा मुलाकातियूं कयूं जे मां, इहे उज़लत नशीनी थी वयूं जग खां जुदाई आ। खबर ना है त तू चाहीं बटे पुरछाइयूं आहीं, खबर ना है त तू चाहीं बटे पुरछाइयूं आहीं, अंधारी रात आहे ऐं अकेलाई अघाई आ।

हरण आयो तराईअ ते लहे थो सिज लयारनि में। हरण आयो तराईअ ते लहे थो सिज लयारनि में, न धरतीअ ते ख़ुदा तस्वीर बि अहिड़ी बणाई आहे।

उथो ऐं महकदे वारो रखो ही जाम मुंह पारो उथो ऐं महकदे वारो रखो ही जाम मुंह पारो ॾिसो हू सिज साम्हूं महकदे ते उस आई।

इहा का शायरी आहे अटो नाहे लटो नाहे। इहा का शायरी आहे अटो नाहे लटो नाहे, अयाज़ इन ॻाल्हि में आख़िर भला कहिड़ी भलाई आहे। नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आई आ, करे तू ओड़कू आए वरी मूं दिल लगाई आ।

0: जी दोस्तों अचो त गॾिजी म्यूज़िक मां मज़ो वठूं। मुमताज़ लाशारी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में गीत आहे, गुल अहिड़ी तरह था हवा में लुॾनि, को हा थो करे को न थो करे।
1: हवा में लुॾनि

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हुजो नाय जो 5 वॻे ताईं, मस्जिद रेलवे फाटक मातली, 2 8 79 087। सुकून ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि अर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं

0: थर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फ़ोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: प्यार जो कैसा पेच मा पाए वेठो आ, प्यार जो कैसा पेच मा पाए वेठो आ, पत्थर जे बुत खां आस लगाए वेठो आ। प्यार जो कैसा पेच मा पाए वेठो आ, पत्थर जे बुत खां आस लगाए वेठो आ। हू छा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू, हू छा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू, मां जंहिंजी खातिर पाण भुलाए वेठो। जी दोस्तों, प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासीं, कॉल लाइन ते मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? कुर्बान अली ख़ास केली।
1: जी जी,
0: वेलकम भलीकार साईं। अलाह जा एहसान लख, थोरा थोरो इहो पाण खां रेडियो साइड कजो पहिरां, अवां जो आवाज़ ॿुधण में पियो अचे रेडियो खां। कुर्ब लख थोरा, प्रोग्राम कीअं पियो लॻे?
1: प्रोग्राम
0: शायरी अवां सभिनी महबूबनि जी शामिल हूंदी आहे, सिंध जे वॾनि नाले वारनि शायरनि जी शायरी शामिल हूंदी आहे, असांजो बि हिकु अधु को मिड़ई हुन में को चौसटो या को ग़ज़ल गीत शामिल हूंदो आहे। जी बिस्मिल, पिण शामिल करे सघो था पंहिंजी शायरी या चूंड शायरी। वाह वाह वाह वाह, लाजवाब। सजण मूंखां दूर थी वए, अखियुनि खां बि दूर थी वए। वाह वाह,
1: सजण मूंखां दूर थी वई, अखियुनि खां तूं दूर थी वई, तोखे चाहे चाहे वक़्तु गुज़री वियो, मूंखां तूं हवा वांगुरु हवान वांगुरु विछड़ी, मूंखां दूर थी वई, सजण मूंखां दूर थी वई।
0: वाह साईं वाह वाह वाह,
1: तोखे ॾाढो चाहियूं था, तोखे ॾाढो भायूं था, तोखे ॾाढो चाहियूं था, तोखे ॾाढो भायूं था, तूं हवा वांगुरु उजड़ी वे, मूंखां तूं दूर थी वई, अखियुनि खां दूर थी वई, मूंखां तूं दूर थी वई। तूं दिलबर मुंहिंजो राणो हुई, तूं सफ़ा तूं प्यारो हुई, तूं ख़ासकेली सां दीवानो उजड़ी वई, तूं गुरब में कुर्बान खे हथ छॾाए,
0: मूं
1: सां गॾु तूं राहुल में विखामी वई, मूंखां तूं दूर थी वई, सॼण मूंखां दूर थी
0: वई। वाह साईं वाह वाह वाह, असल में हिन में जेको आहे न, अवां वराए वराए वरजाए काफ़ी रखियो आहे साॻियो, पर इहा असल में अवां जी फीलिंग्स आहे, अवां जी दिलि जूं ॻाल्हियूं आहिनि, ऐं क़दुरु कजे थो अवां जी हिन शेर व शायरी जी, अवां जी हिन तखयुल जी। लाजवाब, पहिरां को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो?
1: जेको तारो ॾाढो मीराणी दोस्त आहियो, ॾाढो प्यारो आवाज़ हो, इहो बि हुनखे सलाम मोहबतो।
0: ऐं
1: अल्ताफ़ वाजे साईं कलाम ॿुधायो, हिकिड़ो
0: कलाम बिल्कुलु शामिल कंदासीं, फरमाइश करे
1: छॾियो। मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे।
0: जी जी, हुकुम कयो।
1: असांखे कलाम ॿुधाइजो, चमन वीराणी जो कलाम आहे, त हल त हलो यार भई घुमण कचेरे।
0: बिल्कुलु दोस्त, प्रोग्राम ॿुधंदा रहो, प्लेलिस्ट में शामिल कंदासीं अवां जी इहा फरमाइश। थैंक यू पहिरां कुर्ब, ओके, लव यू टू। जी दोस्तो, ॾाढी प्यारी शायरी बि ॿुधण में मिले पई अवां सभिनी महबूबनि जूं, ऐं ॾाढा अदब शनास दोस्त शामिल थी रहिया आहिनि प्रोग्राम में। मां बिल्कुलु मोहतात थी करे हाणे करणु लॻो आहियां प्रोग्राम, भुल चुक सनी सुकी का ग़लती उहा थोरो इग्नोर कजो। कॉल लाइन ते मौजूद आहिनि, कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हलो, कॉल शामिल कोन थी सघी आहे।

0: सो हुकुमल जी अवां जे हुकुम जी तामील कंदासीं। शमन अली मीराली जी बैक टू बैक असां खे ॿिनि गीतनि जी फरमाइश थी वई आहे, त हिकिड़ो गीत असां लाज़मी शामिल कंदासीं घटि में घटि। त पोइ ब्रेक ते वञण खां अॻु में असां ट्रैक प्ले कंदासीं, पर हिकिड़ी कॉल शामिल करे ॾिसूं था। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हैलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हैलो जी साईं, जी बिल्कुल, अवां जो बि हींअर अचे पियो। केर किथां खां? जी जी जी, केर किथां खां? सोनो पिताफ़ी खां। निसार अहमद पिताफ़ी, वेलकम, भलीकार, ख़ुश आमदीद पहिरां। हैलो, कुझु चवणो आहे?
1: शेर ॿुधाइणो
0: आहे। बिस्मिल्लाह, इरशाद।
1: रब तुंहिंजी जवानी आहे।
0: हा,
1: रब तुंहिंजी जवानी आहे।
0: हा,
1: दिलि मुंहिंजी दीवानी आहे। रब तुंहिंजी जवानी आहे, दिलि मुंहिंजी दीवानी आहे।
0: वाह साईं वाह, बिल्कुल, जवानी गज़ब हूंदी त दिलि त दीवानी थींदी। दोस्तनि जा नाव शामिल करणु चाहींदो? मुंहिंजा बि सभिनी खे सलाम। लव यू सर, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाणे जेकॾहिं गज़ब जो ज़िक्र थी वियो आहे त पोइ दोस्त जी फरमाइश पूरी कंदासीं। हुकुम जी तामील अवां जी। शमन अली मीराली जी खूबसूरत आवाज़ में हाय गज़ब थी वियो, दिलि थी धड़के। अचो त गॾिजी इन ख़ूबसूरत ट्रैक खे एंजॉय कयूं।

0: की लहर GETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।